नत कांति न तीर्थानां नत कांति न तीर्थानां न शास्त्राण जपानहि